बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। खेद की बात है मगर समापन की घड़ी करीब आ गए है और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद पारी आएगी टॉक एट 7 की। ऑलवेज वंडरफुल टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय आवर टीम ऑन टॉक एट 7। अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि।